0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: morning sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते. सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा. अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे.
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:06।
1: Bollywood.

0: still doing some amazing business, which is a sign of great things to come, because lots of other series have got that confidence to be made into movies. This was Saanson Ki Mala. Jitne bhi version is gaane ke bana, utne acche hi hote hain, yaar. It's from Mirzapur, the movie.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि वेट एंड वॉच, जब उनसे पूछा गया कि इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ यू नो मोर फिल्म्स कमिंग आउट इन द यूनिवर्स, या किसी कैरेक्टर को लेकर उसकी दुनिया पे फिल्म्स, लाइक जस्ट वेट एंड वॉच, आगे देखो होता है क्या, आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द शो. एंड यू नो वॉट हैपन्स एवरी डे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यूव गॉट टू feed me some information, some songs that you love. Aajkal, which song is on top of your playlist? Kaun sa wo gaana hai jo agar main aapse poochun ki subah savere the first song that you want to listen to, then what would your recommendation be? Send that to me. WhatsApp at 054-309-1062. That is our WhatsApp number, 054-309-1062. Coming up in just a while from Main Vaapas Aaunga, this one's called Mascara.
2: Lai mascara, lucky ani pai rakhna. Meri jaan, meri haan, tere naal.
0: Keep it locked to Big 106.2. We are the Beat of Bollywood.

0: 그래, 참. 얘들아, 줘. 자는 애들 봐봐. 앞뒤. 마브라우, 단파트라우, 앞뒤. 뭘.
1: 네. 106.2. The Beat of Bollywood.
2: New term, new Jetour. Drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMIs starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain and Fujairah today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
3: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: अपने business dream को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान New Ventures Free Zone के साथ. अब सिर्फ दो घंटे में अपना लाइसेंस 48 आवर्स में एक वीजा पाइए ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू 100% डिजिटल प्रोसेस मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae. Are you ready?

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Morning at 7:22 on the clock and 31 degrees Celsius right now. Humidity at 69%. Winds blowing at 16 kilometers per hour. Highs of 37, lows of 31 degrees.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2.
1: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: The Big Breakfast, brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: Morning at 7:38 on the clock on this 1st of October, Thursday. Let's take a look first at 311. बहुत यहाँ पर ट्रैफिक दिख रहा है. दिस इज हेडिंग साउथ राइट आफ्टर अरेबियन ब्रांचेस, मोटर सिटी के आसपास, स्पोर्ट्स सिटी एंड देन गोइंग ऑल द वे टू जुमेरा गोल्फ एस्टेट्स. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्लो मूविंग ट्रैफिक आउट देयर, सो बी वेरी केयरफुल इफ यू हेडिंग आउट साउथ बाउंड 311 पे. इट्स वन ऑफ दोस थर्सडे मॉर्निंग्स. 44 पर भी गोइंग साउथ, गोइंग टूवर्ड्स 311 JVT की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलेगा. एंड देन इसका रिजल्ट क्या है, हिस्सा स्ट्रीट इन बोथ डायरेक्शंस गोइंग टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम 44 फ्रॉम 311 यू विल फाइंड वेरी वेरी स्लो मूविंग ट्रैफिक. ओम सिक्किम स्ट्रीट पर भी दुबई हिल्स मॉल और मॉल ऑफ द एमिरेट्स के बीच में यू विल फाइंड कंजेशन. देन 44 की बात करें तो अलकूज फोर्थ पे साउथ बाउंड ट्रैफिक थोड़ा बहुत, थिंग्स आर क्वाइट ओके. रसल खोर गोइंग टूवर्ड्स D3 एंड शेख जायद रोड पर देर इज अ बिग पैच ऑफ ट्रैफिक एंड दिस इज हेडिंग साउथ क्लोज टू ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट एंड सतवा वाले एरिया की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलेगा राइट एज यू क्रॉस दुबई क्रीक. इसके अलावा अप नॉर्थ 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा द यूजुअल 10-11 मिनट्स की देर. देर इज यू नो एन इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड एट बेरूत स्ट्रीट दिस मॉर्निंग एंड द बिग स्टार ऑफ द शो ट्रैफिक वाइज इज E88. 41 मिनट्स का डिले, 10-12 मिनट तो यूजुअल है लेकिन 41 मिनट्स का डिले इज टोटली अनयूजुअल हेडिंग टूवर्ड्स शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. स्लो मूविंग ट्रैफिक ऑल द वे towards Sharjah International Airport. You'll find on E88. In case aapko kuch dikhta hai, give me a call. 800-1062 par.
1: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बॉलीवुड।

एकता कपूर एंड टीवीएफ, क्या अनएक्सपेक्टेड कोलैब था। बट एज यू वुड एक्सपेक्ट, फिल्म की सिर्फ एक ही हाईलाइट है, एंड दैट इज द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म। द सॉन्ग्स कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल, एंड इन केस आप जीतना चाहते हैं 250 दिरहम का पापा जॉन्स वाउचर, पापा स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप करो 0543091062। आज सुबह का ये आखिरी मौका। 106.2

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 8:30 on the clock on this 1st of October. Let's take the two callers with us on the phone line. Sabse pehle, good morning going out to Pritesh. How are you doing?
2: Good morning, good morning. All good, all good.
1: Kaam pe pahunch gaye ya abhi parking lot se baat kar rahe ho?
2: Pahunch raha hoon, late hoon.
1: Aaj late ho?
2: Haan.
1: Kitni baar hota hai hafte mein ye?
2: Almost every day.
1: Chalo, full points for honesty out there. I've also got Rahul with me. Rahul Rati, good morning.
3: Good morning.
1: कैसे हैं आप? आप तो लग रहे हैं कि कहीं कॉन्फ्रेंस रूम से बात कर रहे हैं. ऑलरेडी एट वर्क?
3: हां, मैं ऑफिस में हूं, मैं अपने रूम में हूं. यस,
1: व्हाट अ कंट्रास्ट वी हैव गॉट. मतलब कभी टाइम पे ना आने वाले प्रीतेश और हमेशा टाइम पे जाने वाले राहुल हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं. इज दैट ट्रू राहुल? और मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ.
3: नहीं,
1: अब आपने बोल ही दिए तो अब है. मैं कैसे मना करूं अपने मुंह से? मेरे सीनियर सुन रहे हो तो या राहुल राठी इज ऑलवेज ऑन टाइम. ओके, बट चलो, वी गोना बी प्लेइंग दिस कॉन्टेस्ट विच इज वेरी वेरी अमेजिंग. गॉट सम अमेजिंग रिस्पॉन्सेज. थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर मैसेजिंग फॉर दिस कॉन्टेस्ट. व्हाट्स गोना हैपन इज दैट आई एम गोना गिव यू सम इन्फॉर्मेशन अबाउट पापा जॉन्स. ऑलराइट, द बिग ब्रेकफास्ट इज ब्रॉट यू बाय पापा जॉन्स. एंड इस इन्फॉर्मेशन के सुनने के बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ तीन सवाल बेस्ड ऑन दैट information that I've just I'm going to read out for you. Okay, and agar aapko lagta hai ki aapko jawab pata hai, you got to use your name like a buzzer. Okay, to agar Pritesh aapko lagta hai aapko jawab pata hai to aap chillaoge papa Pritesh, aur agar Rahul aapko lagta hai ki aapko jawab pata hai aapko koge papa Rahul. Okay guys, samajh mein aa gaya na?
3: Yeah.
1: Okay, one of you I think has their radio on, so usko off kar do to better rahega, otherwise it seems like main Lonavala echo point pe khada hua hu. So are you guys ready?
3: Yes.
1: Yeah. So without further ado, let us start the Papa John's contest.
0: Participate in Who Gets the Pan from Papa John's and get a chance to win 250 dirhams Papa John's voucher exclusively on Big 106.2.
1: Yes, 250 dirham ka Papa John's voucher up for grabs. Now the information is this: Papa John's has launched the new pan pizza, and this is quite literally the new rule for pan pizza, new standard for pan pizza. It's loaded with crispy garlic parmesan crust, edge to edge toppings isme hai, Italian seasoning, a soft fluffy pan baked base, and 360 degree cheesy goodness. And when we say 360 degrees, it means on top, around the sides, and at the base. 6 cheese blends hain layered all around. More crunch, more cheese, more toppings in every bite. Aa gaya muh mein pani? Pritesh and Rahul, ab chalo main sawal poochta hu. Agar aapko lagta hai ki aapko jawab pata hai, you got to shout your name like a buzzer, but don't forget to add papa in the beginning. Okay?
3: Okay.
1: The first question, fill in the blanks. In the new pan pizza by Papa John's, there is dash seasoning.
3: Papa Pritesh. Crispy Parmesan garlic.
1: नहीं, एक कंट्री का नाम है इसमें. डैश सीजनिंग.
3: पापा राहुल.
1: Italian seasoning is the correct answer. 1-0 in favor of Rahul. Very quick on the buzzer, Pritesh. लेकिन इस question की मैं बाजी मार गया Rahul. Okay. All set for the next one. Fill in the blanks. The new pan pizza by Papa John's has a crispy dash parmesan crust.
3: Papa Rahul. Crispy garlic parmesan.
1: अरे क्या बात है, बाजी मार लिया राहुल ने. And इसी के साथ 250 दिरहम का वाउचर भी हो गया राहुल राठी का. Congratulations, but Pritesh, thank you so much for taking part in this contest. Commiserations. There can be only one winner, but now एक तो आपने वाउचर नहीं जीता, ऊपर से अब आपका बॉस की डांट भी आपको सुननी पड़ेगी. Pritesh, thanks very much.
3: Thank you.
1: Take care, man. Rahul, कैसा लग रहा है?
3: बहुत बढ़िया.
1: आपका तो वीकेंड सेट हो गया है?
3: मैं अपनी कलीग के पास आ गया हूँ. We'll be sharing the pizza voucher.
1: अरे ऐसा क्या मतलब? कलीग ऐसा क्या किया इस कलीग ने that he deserves this half of the voucher?
3: So I have Merlin on the line with me.
1: हाँ.
4: Good evening.
1: Hi Merlin.
4: Hi.
1: Wow, I have never heard. This is I've done radio for a very long time, Merlin, and okay. This is the first time that somebody wants to share this voucher that they won, not with a family member but with a colleague. Merlin, please tell me in very few words, what is it that you have done that you deserve this highly coveted voucher? Tell me.
4: All official matters are cleared through me, so.
1: कितनी खूब. यू आर एन HR मैनेजर, आई एम अज्यूमिंग.
4: No. I'm office manager to the corporate strategy and marketing department.
1: Wow, I love that. You will be very proud of the strategy that Rahul has used after winning this contest for giving 50% to the strategy. Bhai, kya Rahul?
3: Yes, sir.
1: Aap heera hai, bhai. Heera.
3: Kya super strategy ka banda hoon, ye sab karna padta hai.
1: Bahut hi badhiya strategy hai, bhai. Bahut hi badhiya. I think Rahul.
4: Main crown hoon to.
1: ये तो आप मैं क्या का आप इनकार कैसे कर सकता हूँ मैं. एक तो राहुल मतलब हमेशा टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, ऊपर से वाउचर जब जीतते हैं उसका आधा हिस्सा आपको देते हैं. क्या क्या मिलेगा राहुल को? ये वाउचर तो कम है आपका, छुट्टी उट्टी का अप्रूव हो जाएगी कुछ और कुछ.
3: Q4 शुरू हो गया है, अप्रेजल टाइम आ रहा है, तो
1: पड़ेगी. सारे आपके टारगेट वारगेट सब माफ है मर्लिन की तरफ से और हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से. कांग्रेचुलेशंस राहुल एंड मर्लिन फॉर विनिंग दिस 250 दिरहम्स का पापा जॉन्स वाउचर. थैंक यू सो मच.
4: Take care.
1: That is Rahul, who is a shit. I'm being honest with you. I've never heard that happen before.
0: Participate in Who Gets the Pan from Papa John's and get a chance to win 250 dirhams Papa John's voucher exclusively on Big 106.2.
1: अगर आप भी जीतना चाहते हैं 250 दिरहम का पापा जॉन्स वाउचर, मैसेज करो पापा स्पेस अपना नाम, मैसेज मतलब व्हाट्सएप करो पापा स्पेस योर नेम व्हाट्सएप टू 0543091062.
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Slow it down.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एंड एशियन गेम्स का सारा आज बहुत ज्यादा एक्शन चल रहा है. पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट सेमीफाइनल्स. पाकिस्तान सेल थ्रू एंड नाउ दे एंटर्ड द फाइनल्स.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: India versus Sri Lanka, the second semi-final is on right now, and India have scored after 13.4 overs 112 for 4. They're going in a run rate of 8.2 against Sri Lanka. Ki bowling kafi strong lag rahi hai. Suryavanshi, Vaibhav Suryavanshi scored 38 of 21. Abhishek Sharma, Sanju Samson saste mein out ho gaye. Shreyas Iyer bhi the captain, and Ishan Kishan is playing right now, 36 not out of 25, and giving him company is Bapu Akshar Patel, who scored 8 of 12 बॉल्स. आगे आगे देखो होता है क्या. आज 11:30 बजे इंडिया पाकिस्तान का हॉकी सेमीफाइनल इज ऑल्सो गोना बी हैपनिंग एट द एशियन गेम्स. सो हु इज एक्साइटेड. सॉन्ग्स कमिंग अप फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज. आज सुबह का आखिरी बोर्डिंग कॉल. अगर आप जीतना चाहते हैं अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम, बिग चेक इन स्पेस योर नेम, व्हाट्सएप इट टू 0543091062.

0: Hollywood. Now lease a brand new SUV from Jetor and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Mix. Miss kiya gaya?
3: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
4: किसने अपनी सीट रिजर्व कर ली है फॉर द बिग ट्रेक इन टू जर्मनी? कॉल करती हूँ, ये इतनी बड़ी खुशखबरी जिसको सुनाने के लिए मैं ही इतनी एक्साइटेड हूँ कि कौन जाने वाला। लेट मी कॉल एंड लेट सी वो फोन भी उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हेलो
5: हेलो
4: हेलो, हाय हेतल।
5: हाय अपनी, हाउ आर यू?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका दिन?
5: आई एम वेरी गुड। हेक्टिक चल रहा है, मीटिंग्स।
4: ओहो, अभी भी मीटिंग में हो क्या आप?
5: नहीं, अभी नहीं हूँ मीटिंग।
4: बैठे हो, खड़े हो?
5: बैठे हूँ।
4: वेरी नाइस, क्योंकि आप चल रहे हो हमारे साथ बिग ट्रेक इन टू जर्मनी।
5: नो वे।
4: अरे नहीं भाई, सच में बता रही हूँ मैं, आई एम नॉट किडिंग।
5: आई कांट प्रोसेस इट, प्रोसेस ही नहीं हो रहा मेरे से।
4: देखो कितना इजी था भाई, देखो अभी हेक्टिक, देखो हमने बेस्ट बना दिया कि नहीं।
5: डे ने योर बेस्ट बना दिया, यू मेड माय ईयर।
4: कंग्रेचुलेशंस हेतल वंस अगेन एंड सी यू ऑन द ट्रिप नाउ। यार बहुत मजा करने वाले हैं।
5: थैंक यू सो सो सो मच फॉर द
0: ऑपर्चुनिटी। चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनि ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It started as 40 minutes, is now down to 16 minutes. The delay at E88, and this is right after Oasis Mall and Charger going all the way to safe zone. 16 minutes ka slowdown yahan par aap expect kar sakte in the direction of the Sharjah Airport. Then there's 311, E11 heading south, going towards Dubai from Sharjah. Usual hotspots for usual amount of traffic. Then there is Beirut Street, Damascus Street. Ka traffic is building up. Also 44 per going towards Russell Khor from Nadal Hamar wala area. You'll find a bit of congestion. Also going south after Business Bay towards Alkuz Fourth. Aaj northbound traffic bhi hai. Albarsha south se jaise aap north jayenge, going towards Om Sikkim wala area, you'll find a bit of congestion. 311 per wapis aa jate hain. And as you cross Arabian Ranches all the way to Sports City, आपको मिलेगी 5 से 6 मिनट की देर।
0: Now lease a brand new SUV from Jetord and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Big 106.2.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ये मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: मौके हाथ से निकलते जा रहे हैं, द चांसेस आर स्लिपिंग आउट ऑफ योर फिंगर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कॉलिंग द इवेंचुअल विनर्स. जस्ट टू मोर डेज ऑफ दिस कॉन्टेस्ट फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी. यू कुड फ्लाई टू जर्मनी विद टीम बिग. हाउ डज दैट साउंड, नीरज? नीरज,
2: वेरी एक्साइटेड.
1: आर यू अ ट्रैवलर, और इज इट हैज बीन अ व्हाइल सिंस यू हैव ट्रैवल्ड, या क्या है आपकी आजकल travel habits?
2: Not a regular traveler. Since last year I haven't traveled anywhere.
1: Achha, oh my god, yeah. Yaar, itne saal, oh my, ए, itne mahine ho gaye, itne ghante ho gaye travel kare hue. Last year se aapne travel nahi kiya. Chalo, yes. Theek hai. There are people on the show that have come and said ki main 6-7 saal se, aap to ek hi saal, par theek hai yaar, we don't discriminate on that basis thankfully Neeraj. But chalo, second last day pe aapka number lag gaya, congratulations sabse pehle.
2: Thank you,
1: thousands
2: so
1: and thousands of messages, usme se aapka number laga, in itself is a big thing. So now what I'm going to do is I'm going to ask you a very simple question. Ek vibe check karta hu Germany ki. We देखते हैं कि नीरज प्लस जर्मनी इक्वल टू वॉट. ओके, एंड इफ यू गेट दिस राइट, योर नेम गोज इन टू द ड्रॉ एंड यू गेट वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम टू जर्मनी विद टीम बिग. बोलो, डन डील?
2: Sure, thank you. Yeah, done deal.
1: Okay, the question for you, I'm going to give you 10 seconds to answer this. Okay, the question is, what word do people use in Germany when clinking glasses to say cheers? Germany mein jab log cheers karte hain, clinking glasses together, to kya kehte hain? And your time starts now. Option A, is it Prost? Option B, is it cheers? Your option C, is it salut?
2: Prost.
1: Prost, are you sure? Is the correct answer. Congratulations, aapke naam chala gaya draw ke andar.
2: Thank you so much.
1: चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज ने बिल्कुल सही एस्टिमेट लगाया है यार. अभी आपकी फीलिंग तो ऐसी लग रही होगी जैसे कि आपने अभी इंटरमीडिएट पास कर लिया सीए का, है ना? अभी फाइनल बचा.
2: Oh yes, I feel like going to the pub now.
1: Yeah, you feel like doing a bit of cheers yourself, but congratulations. Like I said, अभी आपने इंटर पास किया है, अभी जो है ना फाइनल एग्जाम देना बचा हुआ है. आपका नाम ड्रॉ में चला गया, you're one step closer, which in itself is a big thing, नीरज. So congratulations, but also keep your fingers crossed, okay?
2: Yeah, sure. Thank you for note 6.2.
1: Take care. That is Neeraj, हमारे आज के विनर हैं, आज के ड्रॉ एंट्रेंट हैं. आप भी इनके तरह व्हाट्सएप करते रहो, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम. उसे व्हाट्सएप करना है 0543091062 पर.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है.
4: नाम है सिद्ध ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back and it's bigger than ever. So pack your bags because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 0543091062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2.
5: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 10:06।
1: Bollywood.

0: एक होता है आंसरिंग योर क्रिटिक्स, और दूसरा होता है कि उनको एक कुर्सी पे बिठाकर उनके मुंह पे टेप लगाकर उनके हाथ पांव बांध देना. दैट्स व्हाट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हैव डन इन द फर्स्ट टू ओडीआईज इन द वेस्ट इंडीज सीरीज.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: स्कोर 100 रोहित शर्मा, एंड उसके बाद जो उनका सेलिब्रेशन था दैट इज गॉन कंप्लीटली वायरल बिकॉज ही डिड अ हाई नी रन, जो घुटने छाती पे लगा के जो दौड़ते हैं हाई नीज करके, ही डिड दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज सेंचुरी ऑलमोस्ट. नाउ ही इज नॉट कंफर्म दिस बट ऑलमोस्ट टू से यू वांट फिटनेस, आई विल गिव यू फिटनेस. 30 ओवर बैटिंग करने के बाद I can still do high knee runs. But if you ask Rabindra Jadeja, this celebration was not enough. Rabindra Jadeja chahte the ki Rohit Sharma kuch aur kare. This is what Shana Rohit Sharma had to say in the post-match presentation.
2: Yeah, he was asking me what was that about. I said, I'll tell you in the dressing room. It's for me. But he was quite innovative. He wanted me to come and slide and jump. And that's how he wanted me to celebrate. I said, man, after 50 overs of fielding and batting almost for 30 overs, I was never going to do that.
0: Yeah, but I mean, we would have loved to see Rohit Sharma doing a slide. Yeah, like a CR7 slide kind of a thing, if that's what Jadeja wanted him to do. But yeah, ये तो एक तरफ जहां पे 400 रन ODIs में चेज हो रहे हैं, इंडिया ने चेज किया, लेकिन सेमीफाइनल चल रहा है एशियन गेम्स का, एंड 169 फॉर 7 इंडिया मैनेज टू स्कोर. ओनली कहना पड़ेगा ओनली 169, ओनली 170 का टारगेट दिया श्रीलंका को टू विन द सेमीफाइनल एंड गेट इन टू द फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान. सो ईशान किशन स्कोर्ड इन 80 नॉट आउट एंड द ओनली अदर स्कोर ऑफ एनी नोट वॉज वैभव सूर्यवंशी. बाकी सारी स्टार साइडेड टीम, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सब के सब. वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट रहे बट बाकी सारे लोग सस्ते में आउट हो गए. देखते हैं कि क्या होता है. द सेकेंड इनिंग्स इज कमिंग अप एट द एशियन गेम्स. ऐसा ना हो, हाँ ये ऐसा ना हो वाली फीलिंग मेरी भी है. सेम व्हाट यू फीलिंग राइट नाउ. Coming up in just a while, this is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: 2. The Beat of Bollywood.
1: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली
3: है. कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
4: दिन की शुरुआत काफी ह्यूमिडिटी के साथ होती है. इट गेट्स डाउन टू अराउंड 41% बाय अराउंड दिस टाइम. 36 डिग्रीज सेल्सियस. विंड्स ब्लोइंग एट 18 किलोमीटर्स पर आवर. इट इज 37 डिग्रीज ऑफ हाइज एंड लोज ऑफ 31 डिग्रीज राइट नाउ.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo, khush hua.
3: Ki hum announce karne wale hain. अपना पहला विनर, यस, द वेरी फर्स्ट पर्सन जो फाइनलिस्ट बना है या बनी है, ये आपको अभी पता चलेगा. द फर्स्ट पर्सन टू कंफर्म देयर सीट्स फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी दिस ईयर, सो लेट मी गिव अ कॉल एंड सरप्राइज देम.
4: हेलो,
3: आपके फोन की घंटी क्यों नहीं बजी?
4: I think I'm in metro, that's why.
3: Oh,
4: you're
3: in metro. Shivani!
4: Is it what it is? Oh my god!
3: What do you think? Why am I playing Dhol Dhamaka for you?
4: I've been selected.
3: You are flying with us to Germany!
4: Finalist.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: चल हटा तेरा खटारा, कोई बोलता कितना बुरा लगता है ना यार. चलो देखते हैं कि कहां पर ट्रैफिक है. मेक्स योर सुपर स्मॉकी कार सीम लेकर खटारा, वेरी मच बेटर सिचुएशन. आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि E88 पर आज सुबह से 40-40 मिनट की देर थी. इट्स नाउ डाउन अराउंड 3-4 मिनट्स गोइंग टुवर्ड्स शारजा एयरपोर्ट अराउंड सेफ जोन E88. E11 पर ट्रैफिक है अजमान इंडस्ट्रियल 2 से हेडिंग साउथ, देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन 11311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा एट द यूजुअल हॉटस्पॉट्स. इसके अलावा अ बिट ऑफ कंजेशन यू विल फाइंड E44 अलखेल रोड पर गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 एंड हल्का पुल्का ट्रैफिक आपको मिलेगा ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट E11 पर एंड दिस इज हेडिंग साउथ. इन केस आपको कुछ दिखता है गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
6: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: है. दिल चाहता है इंडिया पाकिस्तान फाइनल इन द एशियन गेम्स, राइट? इफ यू आर अ स्पोर्ट्स लवर देन ऑफ कोर्स, इवन इफ नॉट, आपको यही चाहिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइटिंग फॉर द एशियन गेम्स गोल्ड मेडल. दैट विल बी अमेजिंग. पाकिस्तान ऑलरेडी इन द फाइनल्स आफ्टर सेलिंग कोस्टिंग पास्ट बांग्लादेश इन द फर्स्ट सेमीफाइनल. सेकेंड सेमीफाइनल चल रहा है एंड इंडिया गेव श्रीलंका अ टारगेट ऑफ जस्ट 170 to beat them and enter the finals, but they've already lost 4 wickets. I'm feeling much, much better. 18 for 4, Sri Lanka ka score ho gaya hai, chasing 170 after 3.1 overs, and at one point it was 0 for 3. I'm not saying 0 runs. I'm not saying 0 wickets. I'm saying 0 runs for 3 wickets. Pehle 3 batsmen Sri Lanka ke team ke duck pe out ho gaya. I completely forgot ke ek certain Jasprit Bumrah is also in the team. And he's taken 2 wickets. Akshar Patel has taken the third one. And there's been a run out as well. So Sri Lanka 18 for 4 after 3.1 overs. Lekin khatra abhi tala nahi hai, bhaiyo.
1: Beat 106.2. Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It's 10:45 and let's take a look at E88. That's a superstar of traffic. Aajkal roz subah bas thoda bahut traffic hi bach gaya 3-4 minute ka going towards safe zone. Then there's E11 par Etihad Road heading south after Ajman Industrial 2. You'll find 3-4 minute ki there. Ajman Sharjah Industrial 6 mein aapko traffic milega. There's S112, S102 Sharjah Ring Road pe E11 Al Nada Interchange 1 and then going towards Dubai Creek. You'll find southbound traffic 311 par bhi 5-6 मिनट की देर अब बच गई है एज यू क्रॉस सिटी सेंटर जाइया. इसके अलावा 44 अलखेल रोड पर यू विल फाइंड 3-4 मिनट का डिले. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस वे फ्रॉम D3 एंड JBC JBT पर भी आपको ट्रैफिक मिलेगा गोइंग टुवर्ड्स एन अवे फ्रॉम 311 ऑन 44.
0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply. Big 106.2.

0: पिछले बहुत हो गया पिछले ऊपर
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग ब्रेकफास्ट ब्रॉट टू यू बाय पापा जॉन्स न्यू पैन पिज्जा। एंजॉय 360 डिग्रीज चीज, लोडेड टॉपिंग्स एंड अ क्रिस्पी पार्मेसान क्रस्ट। ऑर्डर नाउ बिग 106.2। That's my song.

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये

0: your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5pm. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9pm and Sunday 10am to 12pm. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: किसने अपनी सीट रिजर्व कर ली है फॉर द बिग चेक इन टू जर्मनी? कॉल करती हूँ, ये इतनी बड़ी खुशखबरी जिसको सुनाने के लिए मैं ही इतनी एक्साइटेड हूँ कि कौन जाने वाला। लेट मी कॉल एंड लेट सी वो फोन भी उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हेलो
3: हेलो
2: हेलो, हाय हेतल।
3: हाय अपनी, हाउ आर यू?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका दिन?
3: आई एम वेरी गुड। हेक्टिक चल रहा है, मीटिंग्स।
2: ओहो, अभी भी मीटिंग में हो क्या आप?
3: नहीं अभी नहीं हूँ मीटिंग।
2: बैठे हो? खड़े हो?
3: बैठे हूँ।
2: वेरी नाइस, क्योंकि आप चल रहे हो हमारे साथ बिग चेक इन टू जर्मनी।
3: नो वे।
2: अरे नहीं भाई, सच में बता रही हूँ मैं, आई एम नॉट किडिंग।
3: आई कांट प्रोसेस इट, प्रोसेस ही नहीं हो रहा मेरे से।
2: देखो कितना इजी था भाई, देखो अभी हेक्टिक डे को हमने बेस्ट बना दिया कि नहीं। Congratulations, Hetal, once again, and see you on the trip now, यार बहुत मजा करने वाले हैं।
3: Thank you so so so much for the opportunity.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song.

0: is all we need.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 37 डिग्रीज आउट देयर बट इट एक्चुअली फील्स लाइक 40 एंड नॉट 45 बिकॉज़ ह्यूमिडिटी लेवल्स में काफी मेजर चेंज आया। इट्स 36 डिग्रीज आउट देयर लेकिन डजंट मैटर यार, आज गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, अपने हिसाब की कॉफी ले लो बिकॉज इट्स वर्ल्ड कॉफी डे।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बिग।

0: उसे झनकार से है दिल के तार में तब से
1: A staycation from just 250 dirhams? Yes, really! I found the deal! Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
2: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बता दूं आज थर्सडे का दिन है लेकिन डेट पे जाने का बेस्ट डे है आज. वर्ल्ड कॉफी डे है बहुत सारे कैफेज में. ऑनलाइन भी इनफैक्ट 10 दिरहम्स की कॉफी मिल रही है, 50% ऑफ, 20% ऑफ, बाय वन गेट वन, इनफैक्ट फ्री कॉफी भी दे रहे हैं यार कुछ कुछ तो. मैं भी अपनी ऑर्डर करने वाली हूँ लेकिन डेट पर अगर आप लेके जाते हो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है. Why I'm saying that? क्योंकि अगर आप डेट पे जाओगे है ना, फ्यूल प्राइसेस भी इतने बढ़ गए हैं, कंपेंसेट करने के लिए आपको कॉफी पे तो ऑफ पड़ ही सकता है. बट फिलहाल मैं कंफ्यूज हूँ, डेट इंपॉर्टेंट है या कॉफी इंपॉर्टेंट है? अब यार मैं तो कॉफी बोलूंगी, आप क्या बोलते हो, डेट इंपॉर्टेंट है ज्यादा या फिर आपके लिए कॉफी इंपॉर्टेंट है? लेट मी नो कॉल करके 800-106 टू द टोल फ्री नंबर. रिपीट कर देती हूँ 800-106 टू. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. किसके प्यार में हो, कॉफी या डेट?

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ Avni आपके साथ and पहली अक्टूबर मुबारक and this October theory I just can't get over it यार. October एक psychological transition क्यों लगता है? क्यों लगता है यार कि कुछ ना बदलने वाला है for the good. पहली बात तो seasonal shift, weather change हो रहा होता है. हमने आज ही experience कर लिया कि humidity में इतना major difference आया है and suddenly ना लगता है कि यार अब साल खत्म होने वाला है. जान फेब मार्च इनफैक्ट जुलाई तक रहता कि यार अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बड़ा टाइम पड़ा है यार साल खत्म होने के लिए. लेकिन अक्टूबर एक्चुअली फील्स लाइक द वीकेंड, द फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ द ईयर. ऊपर से इतने लोगों के बर्थडेज होते हैं, बहुत लोगों के ब्रेकअप हुए होते हैं, मूव ऑन करने का टाइम अचानक से पता नहीं अक्टूबर में ही कैसे आ जाता है. एंड द मेजर वन, द मेजर शिफ्ट, फेस्टिवल सीजन. इतनी सेलिब्रेशन आसपास हो रही होती है, इट एक्चुअली फील्स गुड. एंड फॉर दिस अक्टूबर and for this October I wish for you and for myself
3: he follows my brother
4: jab naam bada money follows jeeta zindagi khul ke
2: paisa hi paisa, paisa hi paisa hoga. If you feel this transition, do let me know, call karke apna experience 800-1062. But until then, keep it locked to Big 106.2.
5: pure desh ko pagla dunga, abhi to kuch pesh kiya hai, suno.
3: Money follows my brother.

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: साथिया ट्रैक बाय सोनू निगम, और ये जो साथ है कॉफी विद करण और हमारा, ये बस लास्ट सीजन तक ही रहेगा।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ एंड कॉफी विद करण सीजन 9 नहीं यार, सीजन लास्ट बोलना चाहिए, बिकॉज इसके बाद और कोई भी कॉफी विद करण नहीं आएगा, ये शो नहीं आएगा। दैट्स बिन सेड, दैट्स द रिपोर्ट। लेकिन र्यूमर्स और अलग अलग हैं कि 14th अक्टूबर से जो ये शुरू होने वाला है सीजन, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी गेस्ट हो सकते हैं, नाम्स जो हैं डोज जो हैं चेंज हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एपिसोड मे बी कैन हैपन विद सलमान खान, एंड इफ नॉट हिम डाउन द लेन डाउन द एपिसोड समय रैना भी आ सकते हैं। एंड आई थिंक सो दैट्स द रीज़न कि वो पहले से ही बोल रहे हैं कि लास्ट सीजन है। समय रैना आ गया तो फिर मतलब हो सकता है लास्ट ही सीजन करना पड़े उनको। एंड हैविंग सेड दैट, मैं सोच रही थी यार कॉफ़ी विद करण में आखिरी सीजन है, इतना कुछ हो गया है इस इरा में, क्या इस सीजन में कॉन्टेंट क्रिएटर्स को नहीं आना चाहिए था? इस थॉट के लिए योर वेलकम। लेकिन ये मटर गश्ती शुरू होने वाली है 14th अक्टूबर को। टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:05।
1: Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2.
3: The beat of Bollywood.
4: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Check into Germany and आज मैंने कॉल किया है रितुल को. Hi रितुल.
5: Hello अवनी.
4: कैसे हैं आप?
5: I'm doing great. What about you?
4: बस मैं भी कर रही हूँ, अपना काम चल रहा है. लेकिन I'm actually really excited कि आपको अभी तक कॉल नहीं आता एंड बहुत कम टाइम बच गया है रजिस्ट्रेशन के लिए. बहुत कम दिन बच गए हैं, आपको फाइनली कॉल आ गया है. How are you feeling?
5: Doing like feeling great in the last moment.
4: क्या करते हो आप इस रितुल?
5: So, मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ, सेल्स में.
4: उनको तो यार हर महीने की वेकेशन चाहिए होनी चाहिए. नहीं
5: हर हफ्ते के बाद.
4: हर हफ्ते? ओ भाई, 12 वेकेशंस एक साल के लिए काफी नहीं है, आपको हर हफ्ते की चाहिए. 52.
5: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू नो, फॉर ऑल द प्रेशर.
4: हो गई सेल्स, हो गई हमारी भी, हो गई. Okay, I'm gonna ask you one question, a GK का question, not the general knowledge but the German knowledge. Let's see, आप वो आंसर करते हो.
5: So my GK is strong, general knowledge is strong, German knowledge, yeah, let's see.
4: Which famous autumn festival takes place in Munich every year with food, music and fun? Your options are A, October Fest, B, Spring Fest, C, Winter Gala.
5: October Fest.
4: पक्का गए हो?
5: Yep, yep.
4: Attend भी किया है?
5: Yes. No, I have not attended. I have friends from Munich who sends me pictures and videos. So, yeah, I want to go, but I haven't been yet.
4: So, agar jaoge Germany, fir doston ko hi milne jaoge bas?
5: Agar Munich jayega to hai idhar.
4: Oktoberfest is the correct answer. आपका नाम रजिस्टर हो चुका है रितुल. यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बिग चेक इन टू जर्मनी. अब बता दो कि आपने सिंपल सा काम किया क्या था.
5: पार्टिसिपेट करने के लिए हम अभी एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया. बिग सेकंड,
4: बस इतना छोटा सा काम करना था एंड हो सकता है कि आप हमारे साथ चल लो जर्मनी.
5: व्हाट
4: आर योर प्लान्स बाय द वे? कुछ तो प्लानिंग चल रही होगी माइंड में.
5: सी एट दिस पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ट्रिप इज टू टेक माय माइंड ऑफ फ्रॉम द डेली डे टू डे 9 to 5 एंड ऑल द ग्राइंड. So, just a vacation to anywhere will be great. Germany, it has a lot of history, which I love. So, yeah, that will be an added benefit.
4: I think so. Vacation, wo vacation kehlati hai ki jab aap wapas office jao aur aapko apne laptop ka password bhul jaye. And hands down for sure, big check into Germany is that vacation. Let's see, aap jaate ho ya nahi jaate ho. Lekin congratulations, aap register ho chuke ho. You're one step closer to come with us to big check into Germany.
5: Thank you. Thank you. Thanks a lot.
4: If you want to participate in big check into Germany, you still have a chance. Type big check in space your name or bhejo is WhatsApp number par 054-309-1062.
2: Participate in the big check in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: क्या तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आ ही जाइए, ये सिनेमाज आपको पुकार रहे हैं बिकॉज कल दो दो फिल्में रिलीज होने वाली है। अगेन इट्स अ क्लैश।
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। कल है फ्राइडे, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे फ्राइडे वाली वाइब्स आ रही है। प्रोबेबली इट्स फर्स्ट ऑफ अक्टूबर, तो लगता है कि महीना खत्म हो गया तो हफ्ता भी खत्म हो चुका है। एनी विच वेज, कल रिलीज हो रही है दो फिल्में, दो बड़ी फिल्में। पहली तो ज्यादा बड़ी है, दृश्यम 3 अजय देवगन स्टारर फिल्म। कल ये फाइनल कंक्लूजन है अब कि ये पकड़े जाएंगे कि ये नहीं पकड़े जाएंगे इस केस में। दूसरी बात, कल रिलीज हो रही है प्रेम कीटाणु एज वेल। दिस इज अ रोम कॉम, लवेबल फनी सी कॉमेडी वाली फिल्म है। अगर आपको दृश्यम 3 के थ्रिल देखने के बाद मन करे कि यार मुझे कुछ फन देखना है, प्रेम कीटाणु इज द फिल्म फॉर यू। लेकिन उसके बावजूद दोनों भी तो देख सकती हूँ मैं, वाई नॉट टू। हम सिर्फ एक पे ही क्यों अड़े रहते हैं। कल रिलीज हो रही है दोनों में से एक, कौन सी देखने वाले हो? अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो लेट मी नो कॉल करके 800-1062 पर।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:06।
2: ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: पान इज दैट डिश जो आप खाते हो खाने के बाद, लेकिन आज तो खाने के बाद हर मील के बाद कॉफी चलेगी।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ, एंड दिस इज योर चांस टू विन ओपन मूवी टिकट्स। करना कुछ नहीं है, बस मुझे कॉल करना है 800-1062 पर। आज जो मैं गेम खेलने वाली हूँ, ऑफ कोर्स द खाओ पियो ऐश करो फूड गेम, लेकिन ये कॉफी एडिशन होने वाला है। कॉल करो मुझे 800-1062 टोल फ्री नंबर पर, एंड मैं खेलने वाली हूँ आपके साथ रैपिड फायर अराउंड फूड, लेकिन आज होने वाला है कॉफी। कि आपको इन दोनों में से कौन सी कॉफी ज्यादा पसंद है? सो ऑल द कॉफी लवर्स अलाइन। चाय लवर्स आज नहीं, आज कॉफी लवर्स की बारी है। कॉल करो मुझे 800-1062 पर। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूँ क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से, थोड़ा सा इश्क ज़रूरी छोड़ दूँ क्या।

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द टाइम वी प्ले खाओ पियो ऐश करो. लेट्स सी आज कौन है कॉल पे. हेलो
3: हेलो
2: हाय कौन बात कर रहे हैं.
3: मोहित.
2: मोहित लंच कर लिया आपने.
3: हाँ कर लिया.
2: क्या खाया आज लंच में.
3: डोसा.
2: डोसा ओ दैट्स माय फेवरेट. लेकिन आर यू कॉफी लवर.
3: नॉट दैट मच.
2: Not that much. फिर आपने आज कॉफी पी नहीं होगी वर्ल्ड कॉफी डे पे.
3: मैंने चाय चाय बस.
2: चाय. ये चाय लवर आज कॉफी बैटल जीतते हैं नहीं जीते. लेट्स सी व्हाट वुड यू चूज एस्प्रेसो या फिर अमेरिकानो.
3: अमेरिकानो.
2: अमेरिकानो या कैपेचिनो.
3: कैपेचिनो.
2: कैपेचिनो या मोका.
3: कैपेचिनो.
2: कैपेचिनो या स्पैनिश लाटे.
3: स्पैनिश लाटे.
2: स्पैनिश लाटे या कोल्ड ब्रू.
3: स्पैनिश लाटे.
2: स्पैनिश लाटे या फ्रापे.
3: Spanish latte.
2: Spanish latte या affogato.
3: Spanish latte.
2: Spanish latte या Arabic coffee.
3: Spanish latte.
2: Spanish latte या filter coffee.
3: Spanish latte.
2: Spanish latte या Vietnamese coffee.
3: Spanish latte.
2: अच्छा last पूछूंगी Spanish latte या फिर dirty matcha.
3: Spanish latte.
2: Matcha पिए कभी.
3: नहीं इसलिए मैंने वही नाम लिया. जो नाम लिया वही मैंने पी अभी तक.
2: Oh God ये तो आप too much honesty हो गई. पर आपकी genuine favorite coffee कौन सी है.
3: cappuccino.
2: cappuccino है तो फिर आपने Spanish latte क्यों बोली.
3: पी है ना तो फिर बोल दी मैंने ऐसे ही.
2: ये latest वही याद था नाम इसीलिए.
3: हाँ मतलब वही.
2: अच्छा अच्छा अगर मैं आपसे चाय के बारे में पूछूं कड़क पसंद है या फिर आपको इलायची वाली चाय पसंद है.
3: मुझे कड़क के साथ में ना थोड़ा पुदीना डाल के इलायची लगे मिक्स करके बनाते ना वो पसंद है.
2: पुदीना इन चाय. रियली.
3: हाँ रियली हम लोग डालते
2: हैं.
3: आपने नहीं पी कभी.
2: नहीं.
3: आप ना कभी भी चाय को उबालो पहले मस्त एकदम चाय पत्ती डालो उसमें पुदीना डाल दो उसके बाद में उसको कम से कम 5-7 मिनट उबालो उसके बाद में दूध डालो और उसको उबालो फिर पियो आप.
2: मोहित आई हैव टू गिव इट टू यू आपने कॉफी लवर को अभी फिलहाल चाय की क्रेविंग करवा दी. दैट टू ऑन वर्ल्ड कॉफी डे. हैट्स ऑफ.
3: Thank you so much.
2: If you want to play Khao Piyo Aish Karo with me, all you have to do is give me a message on 0543091062 WhatsApp number. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड वेकेशन मोड तो यार हमेशा ऑन ही रहता है हमारा. कभी ना कभी व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है कि यार दोस्तों को ऐड कर लेता हूँ. एंड लेट्स सी कि हम इस ट्रिप पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते. लेकिन अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो, यू एक्चुअली नीड समवन जो आपका ना सब कुछ सॉर्ट करता है. Alfred from insurancemarket.ae. Lekin now Alfred can help you plan your next holiday too. Visit holidaymarket.ae या फिर call कर सकते हो आप 800 Alfred पर for holiday packages, staycations and more. So basically ये holidaymarket.ae ही है जो आपकी trip साकार कर सकता है. Keep it locked to Big 106.2. आप जैसा कोई coming up your way after this track.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता। फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स वर्ल्ड कॉफी डे टुडे। अगर आपको ठंड लग रही है गलती से तो आप हॉट कॉफी पी सकते हो। अगर आपको गर्मी लग रही है तो भाई एक आइस लाटे से क्या पता अच्छा फील हो जाए। 38 डिग्रीज एज ऑफ नाउ राइट नाउ, बट ह्यूमिड लेवल्स जो है फिलहाल 40% पे चल रहे हैं।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2.

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड नई नवेली फिल्म का नया ट्रेलर रिलीज हुआ था स्टारिंग यामी गौतम इन द मेन लीड्स एंड दिस इज अ ट्रेलर.
2: देखें आपके सुप चरणों के प्रिंट सीधे हैं या
3: बेहोश होने से पहले हर कोई होश में ही होता है.
4: बार की काया ही पलट कर दी. हाँ?
5: उसने मेरे पैर छुए और छूते ही मेरे घुटने का दर्द गायब.
6: ये सब क्या क्या बनाया बेटा?
7: आप लोग समझ आ रहा है कुछ है? इतना सर गुण संपन्न को कैसे हो सकता है? सोचो ना यार.
8: वही तो वजह होगी भैया, इतनी बड़ी बात करने को सोच ही कर रहे होंगे ना. क्या बिल्कुल घुइया है क्या हम?
1: This is actually too good to be true. 16th October in theaters, Nai Naveli. The trailer is out.
2: Na, athli khun kharaba. तो घर के बाहर हुआ था दादी.
1: अब ये बहू सच में डायन है या नहीं है ये इस दुशहरे को पता लगने वाला है, which is 16th of October. नई नवेली इसकी ना यार, the thing is, इतना हॉरर जॉनर चल रहा है फिल्मों का. लेट्स सी ये वाली कैसे रहती है, क्योंकि इसमें यामी गौतम है, आनंद अल राय की पिक्चर है. द एक्सपेक्टेशंस आर लिटिल टू हाई. विल वॉच इन द सिनेमास. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग मिक्स brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE. Call 800-ALFRED-247.
3: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
4: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड आई रिमेम्बर जब भी धुरंधर रिलीज हुई थी ना, यहाँ तो रिलीज नहीं हुई थी लेकिन गाने रिलीज हुए थे, एंड आई एब्सोल्युटली यूज टू लव दिस क्रेजी ट्रैक. एंड इमेजिन यार, इस पे आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो भाई, ऊपर से दुबई की सड़कें, मैं कह रही हूँ मजे ही आ जाते थे. बट अगर अभी तक आपने वो ड्राइव का मजा नहीं लिया है, नाउ यू कैन लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जेटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1,999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12-month प्लान. विजिट selfdrive.ae. TNC अप्लाई. एंड दिस सॉन्ग कमिंग अप योर वे, माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम धुरंधर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: You know me from insurancemarket.ae. Now let me simplify your money. Credit cards, loans, mortgages. Creditmarket.ae. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड फिलहाल हो रहा है मेरे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी यार के पेज पर AVNI YAAAR. एंड क्योंकि आज वर्ल्ड कॉफी डे है, एक बहुत ही तड़कती फड़कती सी रील अपलोड हुई है बिग एफएम के पेज पर, जाके देखो. एंड इन कॉफी टाइप्स में से आपकी कौन सी फेवरेट है, डू कॉमेंट.
2: जिन्नी सोनी लगदी है मैनू किसे होर नू ना
1: लगे. दिस इज एक्चुअली मी टू एवरी कॉफी टाइप. आपका आज कौन सा मन हो रहा है पीने का, इट्स वर्ल्ड कॉफी डे. गो देयर 106.2 बिग एफएम के पेज पर और कमेंट करो उस रील पर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill. Finally, पहली तारीख आ गई है, खुशियां आने वाली है, सैलरी आने वाली है, और ऐसे आती है जैसे कि बस कुछ पल की मेहमान हो, फट फट फट बिल्स में निकल जाती है. फिलहाल वी जस्ट थिंकिंग अबाउट आने वाली सैलरी. ऑल्सो टू गिव यू कंपनी अंटिल 9 टुडे ऑल्सो हैपेंस टू बी इंटरनेशनल कॉफी डे. एंड आपका कॉफी ऑर्डर आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहता है, विल डीकोड दैट. बट एवरी सिंगल इवनिंग व्हाइल यू आर हेडिंग बैक होम, जब आप ट्रैफिक जैम में अटकते हैं, हम यहाँ जैम करते हैं विद द कारियोकी एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर बाथरूम सिंगर्स इन जस्ट अ बिट. किक स्टार्टिंग द इवनिंग विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: Bollywood.

0: नंबर बोलने की भी जरूरत नहीं है. ऑल द 90s फैंस ऑलरेडी गाना पहचान चुके हैं. अगर आपने भी पहचान लिया है, यू रिमेम्बर द लिरिक्स. 800-1062 इज द नंबर फॉर कारियोकी.
1: कारियोकी

0: आगे पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I'm very thrilled because the month of October is all about festivities. October, November, December मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. फिलहाल यहाँ पे while you're heading back home, दो-दो घंटे का traffic है. Traffic jam में हम jam करते हैं with the कारियों की. Joining us is Abhishek. Hi.
2: Hi.
1: How are you, Abhishek? कैसा रहा आपका Thursday?
2: काफी अच्छा था. बहुत positive, मतलब बहुत अच्छा feel हुआ. पहला अक्टूबर था.
1: I know, right? There's something about the month, right? October, November, December.
2: बहुत positivity feel होता है. Means, you know, it's very less hot, less humid. और आप बाहर जाएं, घूमें, फिरें, ऐश करें, बस और क्या जिंदगी में.
1: ऐसा लग रहा है मुझे कि अक्टूबर में हम सबके पास पैसा ही पैसा आएगा. Touch wood. करते क्या अभिषेक?
2: मैं सेल्स में काम करता हूँ.
1: Oh, very nice. I hope आपको बहुत सारे clients मिले and Q4 is amazing for you.
2: काश वो दुआ मुझे लग जाए.
1: 100% लगेगी. आप मानो ना मानो लगेगी, आप मुझे कॉल करोगे. फिलहाल गाना गाने का शौक रखते हो?
2: बिल्कुल.
1: चलो जी, तो गाना आपने पहचान लिया है अभिषेक जी की मधुर आवाज में आज शाम.
0: Karaoke.

0: दिया था नाम रख दिया तेरा नाम रख दिया।
1: ओए थोड़े से लेन के बाहर चले गए थे, आपकी सुर बढ़ गया, आपने बड़ा अच्छा है। मतलब किया कभी ऐसी दीवानगी वाली मोहब्बत किसी से?
0: नहीं,
1: अभी तक नहीं हुई।
0: मैं बहुत नहीं, मैं मैरिड हूँ।
1: तो यार जिस शादी में भी तो प्यार होता है, आप तो ऐसे कह रहे हो कि बिना प्यार के शादी हो जाती है।
0: होता है, बट आपने कहा ऐसी मोहब्बत हुई कभी, तो मतलब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कभी ऐसा हुआ नहीं, बट आई लव माय वाइफ।
1: You compensated well, Abhishek. You compensated really well, but you sang also really well. Have a great evening and thank you so much.
0: Thank you so much. Thank you so much.
1: Have a great evening. Bye.
0: Bye-bye.
1: Yeah, karaoke. अगर आप भी ये गाना गाना चाहते हैं, give me a call on 800-1062.
2: Karaoke. Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq. Four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
1: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The Big Check-In is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Germany. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Mina Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big Check-In, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Only on Big 106.2. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: Still 2 घंटा 12 मिनट का डिले अगर आप शेख जायद पे हैवी ट्रैफिक दिस ट्रैफिक व्हिच इज काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल एट द मोमेंट अगर आप जेवीडी से जा रहे हैं ऑल द वे टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी हैवी ट्रैफिक नियर जुमेरा लेक टावर्स मरीना ऑल्सो अ 15 टू 20 मिनट डिले अराउंड डिस्कवरी गार्डन्स हेडिंग टुवर्ड्स फुरजान शेख मोहम्मद बिन जायद पर भी 1 घंटा 40 मिनट का डिले है स्पेशली मर्डिफ टू मुहेसना इट इज स्टैंड स्टिल नियर रिगा इसके अलावा स्लो मूविंग ट्रैफिक आपको मिलने वाला है अगर आप फहीदी के आसपास है मनखूल करामा साइड एनीथिंग एल्स यू'd लाइक टू रिपोर्ट कुछ अनयूजुअल 800-1062 इज द नंबर टू डायल
0: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. T&C apply.
1: Big 106.2.
3: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम. शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं.
1: Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: थर्सडे की शाम है एंड यहाँ पे महफिल जमी है नॉन सिंगर्स की. वी आर कैरियोकिंग. दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग व्हाइल यू स्टक इन द जैम. वी जैम हियर. आवाज आपकी, कॉन्सर्ट आपका, ऑडियंस मेरी. नाउ जॉइनिंग अस इज मिस्टर वल्ली. हाय.
2: हाय.
1: कैसे हैं आप? गुड इवनिंग. कैसे हो आप?
2: ठीक हूँ. आप कैसे हैं?
1: फैंटास्टिक हूँ मैं. कैसा रहा आपका दिन?
2: मेरा दिन एज यूजुअल हमेशा वैसे ही रहता है जैसे सेल्स में होता है. सबका स्टार्ट होता है मॉर्निंग हडल से, देन आफ्टर क्लाइंट्स मीटिंग, देन आफ्टर Meeting.
1: बहुत बढ़िया. यू नो द बेस्ट थिंग इन टुडेज टाइम इज यू आर गेटिंग मीटिंग्स. बहुत इम्पोर्टेंट है. वी वेरी वेरी ग्रेटफुल. फिलहाल आप गाना गाने का शौक रखते हैं वली?
2: जी मैं गाना गाने का शौक रखता हूँ.
1: लोग तारीफ करते हैं आपके गाने की?
2: जी थोड़ी थोड़ी.
1: चलो जी हम देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी होती है कि काफी ज्यादा होती है. अब सुनेंगे वली की आवाज में.
0: Karaoke.

0: 딴지.
1: मेरा नसीब है जो मेरे यार ने अपने प्यार से जाने जाना दीवाना तेरा नाम रख दिया नाम रख दिया मेरी चाहत की चांदनी मेरे आंखों में बच गई बस इतना ही है।
0: ऐसा लग रहा था आप सीधा अपने बाथरूम में पहुंच गए हो।
1: दिल से गाना चाहिए ना, गाना तो सब आदमी तो नहीं गा सकता है।
0: प्लेटफॉर्म ही दिया नॉन सिंगर्स के लिए, एक्सक्लूसिवली नॉन सिंगर्स के लिए। क्योंकि मैं खुद नॉन सिंगर हूँ बट मुझे गाना गाने का बहुत शौक है।
1: आपकी आवाज बहुत प्यारी है माशाल्लाह।
0: थैंक यू सो मच। आपकी भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से।
1: थैंक यू।
0: तो वली कभी किसी लड़की के लिए ऐसी दीवानगी वाली मोहब्बत हुई है आपको? आपको हुई होगी मुझे लग रहा है, रोमांटिक टाइप के आदमी लग रहे हो।
1: जी बहुत भयानक हुई थी लेकिन शादी नहीं हो पाई।
0: मोहब्बत वही सच्ची है जो अधूरी रह जाए।
1: नहीं लेकिन फिर वाइफ आ गई ना।
0: अच्छा तो ये शादी इसलिए नहीं हो पाई कि वाइफ आ गई कि वाइफ थी इसलिए शादी?
1: पहली जो मोहब्बत थी उसमें दिल टूट गया तो शादी नहीं हो पाई। अभी तो सारे दिल जो टूटे हुए ना सब जुड़ गए हैं।
0: बहुत बढ़िया, शादी के बाद अपने आप ही सब जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़े तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। बाय, आपने गाया बहुत अच्छा, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग।
1: थैंक यू।
0: बाय वाली,
1: बाय बाय। कारियो की

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on, fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is The Big Thrill. And of course, today happens to be Coffee Day, International Coffee Day. I'm a coffee person, I'm a coffee paglu, but मैं सिर्फ काली कॉफी पीती हूँ. मतलब मेरी कॉफी देखकर काफी लोग सोचते हैं कि क्यों ये गर्म पानी में कॉफी डाल के क्या मजा आता है. I think people who love black coffee they'll understand कि वो दूध और शक्कर कॉफी का मजा खराब करती है. But आपकी कॉफी आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहती है, आज शाम बताएगा मेरा चैट जीपीटी. सो इफ यू वांट टू नो योर पर्सनालिटी टाइप बेस्ड ऑन योर कॉफी ऑर्डर, प्लीज डू गेट इन टच विद मी. वी आर आल्सो प्लेइंग दिस फन गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है 5 सेकंड के अंदर. पता है मुझे साउंड्स इजी, बट इतना ईजी है नहीं. 800-1062 पे ट्राई करो.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:07।
2: बॉलीवुड।

0: Flights, hotels, transfers, visas, leave it to me. Everything your holiday needs, sorted. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: आज है पहली तारीख, फर्स्ट अक्टूबर इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल कॉफी डे। एंड आपका कॉफी ऑर्डर आपके बारे में क्या कहता है ये मेरा चैट जीपीटी बताएगा। फिलहाल दीपेश हाय।
3: हेलो, हाउ आर यू मान?
2: आई एम गुड, आप कैसे हो?
3: आपसे बात हो गई तो और बढ़िया हो गया।
2: हाय हाय, आप तो हमेशा मीठी कॉफी पीने वाले लग रहे हो मुझे, कि बहुत शक्कर डालते होगे कॉफी में।
3: चाहिए।
2: तो कैसे कॉफी पीते हो आप?
3: आपने सही बात कही, मैं कैपेचिनो।
2: कैपेचिनो विद अ लॉट ऑफ शुगर?
3: Not lot of, medium sugar, but
2: you like meaty coffee.
3: I like to have a sugar.
2: अब अकॉर्डिंग टू माई चैट जीपीटी अगर आप कैपेचिनो पीते हो मतलब आप काफी ज्यादा अपनी बातें दिल में रखते हो, बताते नहीं हो लोगों को ज्यादा।
3: हाँ बोल सकते हो,
2: है ना?
3: 20-30% ही बाहर निकलता।
2: हाँ, अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगी है ना तो आप वो कड़वा घूट पी जाते हो, बट उसे सामने वाले को बताओगे नहीं कि आप हर्ट हो। यार सही बोल रहा है, मतलब मेरा चैट जीपीटी।
3: आप सही बोल रहे हो, चैट जीपीटी का तो पता नहीं है।
2: नहीं, मैंने उससे पूछा है सर, मैं कहाँ इतनी ज्ञानी, ये तो चैट जीपीटी बता रहा है कि आपकी कॉफी आपके बारे में क्या कहती है। ये देखो मेरा ज्ञान तो सिर्फ लोग सीरियसली लेना शुरू कर देना जिस दिन, तो दुनिया इतनी कलेशी हो जाएगी। बट ये करेक्ट बोल रहा है ना आपके बारे में?
3: करेक्ट।
2: हाँ तो आप काली कॉफी पीना शुरू करो मेरी तरह, फिर आपकी जुबान भी कड़वी हो जाएगी। No filter at all. फिलहाल दीपेश, अब आप यहाँ आए हो तो आपको एक मजेदार गेम खिलाते हैं। It's called the 5-second rule. You get 5 seconds. I'm gonna give you a few categories. तीन चीजें बतानी है फटाफट 5 सेकंड के अंदर। मुझे लग नहीं रहा है कि आप बता पाओगे, बट चलो खेलते हैं।
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: तीन शाहरुख खान की मूवीज।
3: चलते चलते
2: और
3: wow. दिल तो पागल है, hey. कुछ कुछ होता है।
2: वेरी नाइस। थ्री थिंग्स दैट आर व्हाइट इन कलर एंड आप खा सकते हैं।
3: शुगर,
2: स्वीट। स्वीट क्या? शुगर हो गया ना, स्वीट टाइम खत्म हो गया। स्वीट कौन सा स्वीट? तीन ऐसी चीजें जो आपको अपनी वाइफ के बारे में बहुत पसंद है।
3: रोमांटिक,
2: अच्छा,
3: लवली,
2: लवेबल। टाइम खत्म, इतना बड़ा झूठ बोला ना आपने, दिल की बात बाहर अभी भी नहीं आई है आपकी। थ्री थिंग्स दैट यू डोंट।
3: 5 सेकंड आपने बताया है तो इसमें जो
2: सर मैं 5 घंटे भी देती ना तो आप सच्चाई नहीं बोलते। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तीन चीजें अपने बॉस के बारे में जो आप बदलना चाहेंगे।
3: एक्चुअली सब सही है बॉस के साथ।
2: अच्छा अच्छा बॉस है आपका, छुट्टी वुट्टी आराम से दे देता है। तीन नाम विद द लेटर एम।
3: महेश, मोनिका,
2: मोनिका। तीसरी कौन?
3: मिंजल।
2: कौन है मिंजल? ऐसा तो होता नहीं है।
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: कोई तो है मोनिका और मिंजल, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है, जब तक दिमाग में नहीं आएगा तब तक जुबान पे नहीं आएगा। बट ठीक ठाक ही खेला। तो मिंजल ऑफिस में आपके?
3: मोनिका और मिंजल ऐसी लड़की को मैं जानता ही नहीं हूँ।
2: चाचा झूठ होगी कोई,
3: मतलब ऑफिस में नहीं है, इधर नहीं है, इंडिया में है वो भी लाइक रिलेटिव।
2: देखा कोच है, अभी अगली बार ये सच बताएंगे मुझे। चलो जी, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। कड़वी कॉफी पियो कल से, ठीक है? चलो बाय।
3: डेफिनेटली
2: बाय। ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना है, कॉल करो मुझे 800-1062 पर।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Creditmarkets.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
0: Missed your morning buzz?
2: Uthale re deva, uthale re baba.
0: Yes or no?
3: Harsliken glukswash du fast nash Deutschland.
4: I cannot understand.
2: Harsliken glukwash du fast nash Deutschland bhai.
4: No, I cannot.
2: अरे रोशन सलियान, आप जा रहे हो जर्मनी। कैसा फील कर रहे हो इस वक्त बताओ सबको यूएई में। हाउ बैड डिड यू नीड दिस वेकेशन?
4: आई रियली नीडेड अ
2: आप जोर से बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन यार रोशन सालियान, यू आर द विनर। हमने कॉल करना शुरू कर दिया है। कैसा इस वक्त फील कर रहे हो? हाउ एक्साइटेड आर यू फीलिंग राइट नाउ? आर यू नर्वस? आर यू शेकिंग? टेल अस एवरीथिंग।
4: आई एम जस्ट शेकिंग राइट नाउ एंड नर्वस एज वेल। सुपर डुपर एक्साइटेड।
3: नाउ अब और कुछ नहीं करना, और कोई मेहनत नहीं करनी। सो
4: आई जस्ट वांट टू थैंक 106.2 टीम फॉर मेकिंग इट पॉसिबल एंड स्पेशल थैंक्स टू यू एज वेल।
3: Thank you very much.
4: Picking my call.
3: Thank you so
0: Energy
3: much.
0: And action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: 34 degrees, लो जाएगा around 30.

0: कृष्ण ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपत राव आपते बोल
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Hanji, it's time to check in. It's a brand new month, could bring in brand new luck. Agar aap kafi time se try kar rahe hain and you're still not getting a call back from us, probably today is the day. Agar aapne register nahi kiya hai, do it right now. Big check in your full name to 054-309-1062. This is an all expenses paid trip to Germany this winter. Can't wait. मैंने तो शॉपिंग वॉपिंग भी शुरू कर दी है. फिलहाल वील बी अनाउंसिंग अनदर फाइनलिस्ट आज शाम. सो अगर आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, मेक श्योर दैट यू इन द नेटवर्क. एंड अगर मैं फ़ोन करूँ तो उठा लेना, क्योंकि ये कॉल मिस हो गया तो जर्मनी की ट्रिप भी मिस हो सकती है. फिलहाल इफ यू स्टिल नॉट मैसेज्ड, डू इट राइट अवे. अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो आजकल स्क्रैच कार्ड में भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम जीतता हूँ, यू नेवर नो. आई बिलीव दैट द यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, एंड जब यूनिवर्स देती है तो छप्पड़ फाड़ के आपको जर्मनी की सीधा ट्रिप ही देगी. सो गेट्स इन मैसेजिंग. इफ एट ऑल यहाँ पे नंबर नहीं लगता है, हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे आप जाके कॉमेंट कीजिए. वहाँ भी यू हैव अ चांस टू विन this trip to Germany with our team, and this is going to be so much fun. So get set messaging, head to our Insta handle as well, 106.2 Big FM.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, इट्स 7:07। बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae. Early in the morning. The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
1: Still an hour. डिले आपको मिलने वाला है अगर आप शेखजाद में हैं, टू बी प्रिसाइज 58 मिनट का डिले. हैवी ट्रैफिक जेवीसी से जेवीटी ऑल द वे टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिटी. ऑलमोस्ट 38 टू 40 मिनट डिले. ट्रैफिक ट्रेलिंग अ बिट स्लो दैन द यूजुअल इफ यू अराउंड डिस्कवरी गार्डन्स. दिस हैवी ट्रैफिक मरीना से गेटिंग टुवर्ड्स जेबीआर. इनफैक्ट नियर जेएलटी ऑल्सो आपको ट्रैफिक मिलने वाला है. स्लो मूविंग है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट अलखेल पे हैं. Patchy traffic, Marif to Mahesh Naif, you're taking the Sheikh Mohammed bin Zayed, a 33-minute delay at the moment. Anything else you'd like to report, mujhe bataye 800-1062 par.
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2. Big.

0: राजो द बीट ऑफ बॉलीवुड
1: पूरे देश को पगला दूंगा अभी तो कुछ पेश किया है सुनो नाम या दाम
2: नाम मनी फॉलोज माय ब्रदर

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill, now Mansi, and as a millennial, I'm big on nostalgia. So I'm going to take you to 1st of October 2010. Aaj movie release hui thi. I love this movie. And very, very important fact, jisse aapka koi lena dena nahi hai, but main aapko bataungi ki is movie ko dekhne ke baad मैंने प्रियंका चोपड़ा जैसे बाल कटाए थे, वो भी भोपाल शहर में, और वहाँ पे किसी को ज़्यादा ढंग से उस ज़माने में बाल बाल काटने आते नहीं थे। गई तो थी मैं प्रियंका चोपड़ा का हेयर कट कराने, बट सलोन से मैं राधे भैया बन के निकली थी। फिलहाल लेट मी से हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर द मूवी।
2: I'm Kiara.
3: Akash.
2: Live each day like it's your last.

0: अरे बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही।
1: आकाश कुछ करो,
2: अरे मैं क्या करूं, तुम करो।
1: अरे बोलो गा रे,
2: अरे खतरा नहीं बंद हो
1: गई। बात कर, बात कर।
2: आपका ब्रश ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, चलो गए, चलो गए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।
3: याद आ गया, व्हिच आई एम श्योर याद आ गया होगा। इट्स अ वेरी वेरी क्यूट मूवी, प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर। 800-106-2 इज द नंबर टू डायल।

0: Big. आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
3: 34 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 31. फिलहाल ह्यूमिडिटी 62% पर.
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन. विजिट अलरास.me. बिग 106.2.

0: Europe? Asia? Somewhere exotic? I've found unbeatable deals around the world. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: As a millennial, I love nostalgia. I am still in the early 2000s and I love the movies from that era. Aaj hi ke din 2010 mein ye movie release hui thi, Kiara Akash, Priyanka, Ranbir Kapoor, New York, LA. Maine isi movie ke through pehli baar dekha tha. Waise bhi maine movies ke through hi dekha hai filhal. Rahul Juice, hi Rahul.
3: Hi Mansi, how are you?
2: Good, ye reference batao mujhe. Rahul Juice.
3: कुछ कुछ होता है.
2: बिल्कुल सही जवाब. राहुल नाम तो सुना ही होगा.
3: हाँ बिल्कुल यार, इससे बहुत परेशान हूँ मैं.
2: तो कौन शाहरुख का फैन था, मामा के पापा?
3: दोनों ही नहीं थे यार, मैं ही बना था.
2: कितना परेशान है राहुल अपने नाम से. यू नो जब हम स्कूल में थे, assuming you're also a fellow millennial, राहुल used to be a cool boy name.
3: Of course it was in
2: Arya. And college के time पे राहुल used to be a red flag. कूल बॉय से रेड फ्लैग का ट्रांजिशन हो गया था. फिलहाल कैसा रहा आपका थर्सडे राहुल?
3: थर्सडे जस्ट वेटिंग फॉर वीकेंड टू कम. वी हैव अ पार्टी टुमारो.
2: वेरी नाइस,
3: एवरीबॉडी इज एक्साइटेड. आर यू फ्रॉम भोपाल?
2: आई एम फ्रॉम भोपाल. भाई,
3: अरे भाई, हम तो पड़ोस ही निकले आपके. हम
2: आप इंदौर से?
3: जी बिल्कुल.
2: वेरी नाइस, वेरी नाइस. वैसे भोपाल इंदौर की उतनी ही दोस्ती है जितनी दुबई शारजा की.
3: Exactly.
2: तो ये ऑफिस की पार्टी है कल आपकी?
3: हाँ जी बिल्कुल.
2: अच्छा, तो ये वो कूपन वाला सिस्टम है कि अनलिमिटेड है? समझ गया ना जो मैं बोल रही हूँ.
3: कल अनलिमिटेड वाला है.
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जब अनलिमिटेड वाला सीन होता है ना ऑफिस पार्टीज में, तो अगले दिन बहुत सारे लोगों को टर्मिनेशन मिलता है.
3: बट वी आर वेरी मच एक्साइटेड और आज से ही प्यास लगना चालू हो गई.
2: बहुत बढ़िया, बस अब कुछ ही घंटों की बात है, प्यास बुझ जाएगी. फिलहाल राहुल, द मूवी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कियारा आकाश, न्यूयॉर्क, टू स्ट्रेंजर्स.
3: It was Anjana Anjani.
2: आज ही के दिन 2010 में ये मूवी रिलीज हुई थी. एंड व्हाट अ ब्रिलियंट मूवी.
3: एग्जैक्टली, आई एम वेरी मच फाउंड ऑफ वन सॉन्ग फ्रॉम लकी अली.
2: है, बड़ा अच्छा गाना था. सारे गाने बहुत अच्छे थे. विशाल शेखर का म्यूजिक था. आई फील गुड अगेन, अ ब्रिलियंट गाना. अनजाना अनजानी द टाइटल ट्रैक, एंड ऑफ कोर्स द क्लासिक आसपास खुदा.
3: 100%
2: देखी थी थिएटर में ये मूवी आपने किसी अनजानी के साथ?
3: अनजानी आज इट्स बीन 18 इयर्स, शी इज माय वाइफ.
2: वेरी नाइस. कल की पार्टी में जा रही है वो?
3: ऑफिस पार्टी है, पार्टी
2: चलो. थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ अनजाना अनजानी. एंड बिकॉज राहुल लव्स दिस गाना, इवन आई लव दिस सॉन्ग, लेट्स प्ले हैरत एंड रीलिव द अर्ली 2000s के दिन. थैंक यू राहुल.
3: थैंक यू मानसी. थैंक यू.
2: बाय.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धपकेंगे ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: पतली कमर मटका के
3: हाय हाय हाय हाय हाय
2: नागिन से बल खा के

0: चीज की गारंटी है।
1: अगर आप मेरे साथ जर्मनी ट्रैवल करोगे ना, तो यूरोप में भी मैं गाने आपको ऐसे चटपटे ही सुनाऊंगी। फिलहाल ट्रैवल करना है विद टीम बिग टू जर्मनी, देन कल है आखिरी मौका आपके पास। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू इट राइट नाउ। बिग चेक इन, अपना नाम लिख के भेजना है टू 0543091062।
2: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bavri and Kora. Jewelry partner, Meena Jewelers. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
3: Big 106.2.

0: big thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: आ रही है बहुत जोर से वीकेंड वाली फीलिंग आ रही है. बस एक दिन और, फ्राइडेज आर हैप्पी डेज एंड मेरा कोई प्लान नहीं होता है वीकेंड पे, बट मैं बड़ी खुश होती हूँ. कुछ ना करना इज माई फेवरेट थिंग एवर. अरे आजकल तो मुझे घर से बाहर निकलना भी अच्छा लगता है. वैसे मेरी तरह बहुत सारे लोग यही करेंगे इस वीकेंड. पेट्रोल बचाओ, घर पे रहो, सुखी रहो. फिलहाल यहाँ से मेरा बाय बाय कहने का टाइम. यू कैन से हेलो टू मी, पोस्ट दिस ऑन माई इंस्टा हैंडल. बट उससे पहले, अगर आप जीतना चाहते हैं ट्रिप टू जर्मनी, मूवी टिकट, कॉन्सर्ट इन्वाइट्स, देन प्लीज डू फॉलो अस ऑन सोशल्स 106.2 बिग FM. वहाँ पे आप बहुत सारे कमाल बवाल इन्वाइट्स जीत सकते. You can say, Harry, me and Mansi talking. I'll be talking to you tomorrow. We'll bring in the weekend. Good night.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।
1: तेरी

0: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
1: 2 या 4? 4। कब तक वापस लौटेगा?
0: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
1: 4 या 5? 5।
2: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
3: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Some nights need no words, just the right vibe. Sink into the big chill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल